आकाशवाणी इंफाल हौजे ताबीर से लेबाक निंबे से कुदोल गे हान बदा बी कुंज बिहारी शर्मा ने सकपा नोंथोंबम मंगोल जाऊ ने मंगोल जाऊ मैतेना सैरिंग बाई से नुंशिर पोइरे लमदमनी मालिम द अनि शुदबी संगबा न बलोक ताकना इयाई थकता सकमा नदब पुंबी चिकला कयाना चेन चोंग न सान चबा लमदमनी

नहरों की खुंजल तोरम ताबिरम एवं रूप सिंह भू तराम नोक जरी कुरुम जरी नसी की नहरों की खुंजल तोरम दथम जरी फीफा वर्ल्ड कप अमदी मणिपुर की नहा सिंह है भी हिरम सिदा मणिपुर की तोंगान तोंगान में नहा सिंह का उन्होंने वरी वताई सानब उन्होंने वरी वताई सानबी रिबा सलीम पुसम अमदी नसी की तोरम नसी की रिकॉर्डिंग टीम ने सरुग या

0: वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: खुदोल तमजरी मोहित चौहान दगी गीत।

0: करिए तथकली बनो तब थवियो
1: करम तब थगदौरी बनो इसम जम न करी मत खंदब मखई इसिंग सोप चंगजरक पनी गुहासिगी मरुमद मियम लैरमबगी वाखंदी इताउ तौरुदे
0: ऐ बुंगा पियो मखुगी वारी तानिंग मन खदन तोर मन वाशु अमत तहौदे बेमा वा अमत
1: अ इबी महबी गनो ऐगी मिंग मया कौजेये
0: ओ माया नंगी इतारोय सनसेन बिदुगी मिंग खंगन बियो ऐन न वंद केरक नो हाइजिक्रिबा
1: अ महाग न हाइदो हनिंग दे
0: अदो हाइदो वेन हाइबिरु गनो
1: ऐखोयगी खुंगंग सिगी मिदी मसाबु खाक मिनम जदे
0: अदु वेरगा हाइदुक लुरेन हाइबियो
1: अ अदुम बुदी इता अदुन हेन नुंसि फम थोकत्रो
0: सोन थोक ने इकाय बवा फम ने
1: अ अदुबु इकाय ब खंगदब मियोय गुम उइने
0: फागी तो बिरगन ऐ थमोय से पथा फम खंग अमुक ताहिबियो मागे असिम परिचय नाकि लमन बु मतमाम दै सिंग जे
1: लमन गी ओरबदी ऐ सुंहाय हायरर
0: नाकबियो अवाब अमगी मतिंग पांगबि ओइना हाइबियो
1: ऐन हायर इ हाइबदी ऐ यारोय दबनि को अदु ब्रो अनुराधा
0: अनुराधा कयाद नंग सिखर बमि महा के आलमन दे
1: अपोक पपोक पि लै खिद्रे मबो कले मिनरी
0: पावसिना अमक के हेला दु नंग सिहल
1: ऐसा लगे
0: अदु आइ वफम दु मंगोंड खरा
1: ऐसा ले
0: उपाल सिदा वांग ना पु मसुमान साले बले यसिदी फजखरेदा करी लेब कोबगे
1: अनुराधा दहंग बियो एखोय दि खंजे देये

0: इमागी इबुंगो इमा खोइन हारी बसे खंथाबगी मतंग गालाई त्रबनी याद अब याद रबनी
1: अशिरा संधि आए बतो
0: पुम्न मासी की मथकता रतनपुरी की निंथाउना अमदी प्रजा मियाम ने इकाई संगो हांगा दौबा मजाय बे मन ओइगे दब फिबम पुन मासी नंगोंदा खरी मत फाउ दबरा असाव ओन खिदुना मरु ओइनरी बलेबा अनिसे एकनब सोइदन मक ओइरगनी
2: आदु के आमन ताकनबगी दरकार लाइते खांगो पुन मासे ऐ नामा अमदी अंगम बकया खन्नरगा लाइबा सिगी दमक नंगी दमक ख्वाइदिगी अफब ओइरगनी हाइदुना सिन्नरी बथौराने
1: अदु मुन्न नैनरगा अदु याम साव मिनम यागदब मक्लेरबशु मिनम वसिनमर मोइदना ऐ याजर रह
2: मिनम नाकि नतौमने नत्रबदी नंगी खुंगंगदु दगी खुबैयमगी लंफावा हेंडोकनिंगदे नानाउनु पादवरम लबदी पुनमक मशाद तानरम गदबनी
1: अदुबु असोब मिनम वर्षिगी माई पाकप माई थीब अदुदि कृष्लेतन उरीब ऐगी इरुमदा थुप्तुन लै हाइबसमतदि कनांतन खंग
2: ऐ सिनथक्ता
1: इमागी खरकप लाउब इबाई मोगी तर्कसिनदि मसीदी लायर दुना हाइजब नत्न दी सिंगनर बदी पृथ्वी की निंग थोरेल पुम्बन खोमी लामी पुन कलोने ना इमांग दे लेपर बशु ऐब माइते पी बदी गम लोय
2: तमे रे अयुक की युरान मनंग मसु अरु कुवान कमजा हुनबा को कदो साद की सु हेन खंथ दे दाव अरु ऐबो इन खंग दबरी थोरम थोरांग से इंद्र बदी राज विद्रोहिनी हाइदुना रतनपुरी की कैसुम संगसिदा नपुंसी चुप हुंदोक लंगनी मफम सिदगी नाक नान थोक पम बैते अदुगा सिमगा सु खंजलो नंग नथ्वाइनी खंजरीबा खुंगंगी नपीदो लंगजा क्वा की मचिनजा कोहेन खिबंगमे
0: येंगु नपाई मोगि फिबा मसी ओखरे करिगुंबा मतम दसु असाव मतलेम नमांगम खिदे
1: हाय बिन दबगी दमकता फंगकम थोकब दंदी दो फंगजबने हेन फै
0: इबुंगो इमाना इसागे दम पुनमक फनाबा सिनगनी अदुगा येंगो राजकुमारी लेंगलकली चंजरक पैगी याथंग मतंगाइरी मजाय बेमा हेतमक लेंगसिन बिराउ ऐ मपाय बुंगो महाराज की मनाकता वाफम मतंग हंगत लुकी
3: पुंछिया सिदा अहान बोइना नुपी ओइ बिगी इकाई की वांग मलाना हेने इकाई बामा इपुंछी असिदा थोकलगदबा कंजनबगीदमक नखुया खादा चंजरकपनी अदुबु हेने दुम इकाई पा फंगले अदुम लोन थोकदबमक ओइरमलबदी वारौजरम लोइदबनी
1: करी पखुम नोयना मजाय बेमदा खुमजगदबश
3: आइ लोइना ताजरी छना पुनिंग सु खंगजरी खुमबीदबगी वानी वाहैगी लांदी जुब्राज नंगोंखिनी थौदोक असिसु जुब्राज नमाई पाखिनी अदुम ओइनमक आई बुसुसा खंगबियो अमुकसु इकाई की वांग मलान हाइजरी बासिनी नुसीबा लाइबक फबी महाक तो की तनते आयाक सु नुसीबा खंगे उंगा सीदगी सही मंगा की ममांगदा जुब्राज ना मफम मसीदा नोंग मलिंग बीरकलमी नुमित अदुमक तदा आई गिसु

0: 아줌마네, 머리 뿜불시 엉뜨리따비요.
1: 강리, 주바라스 나 수야야다나. 바봉 마하라스 코이나 신바니 나트라.
0: 루이나 엉뜨리따비 코바.
1: 봄나 막디 강리. 아두부 아마 땅디 딱비코. 마자 아이비 마두다. 아이나 가리밍 가우자가니.
0: 막드라마 이기 탐오이다 낭나. 아이브농 시비르바디 아둠나 가리엠나 비밤 톡데.
1: 가리엠나 바. 이 쇼르금나 자오바. 마하라즈 주브라즈 호이나 아이 코이 아비 카쿠 카렘나 비브라 나트라가 아이 하나 주브라즈 다 카렘나 리브라 아이 하티 아한 바 우나 바 막다 다 하이제 키베두니 나락 담아 푸 반다나 사르 빌레 랑굼마니 헤크닝 바 마탐 다 헤크비우 하이나 아디보 나 시디 카리 오이라리
0: 허시막 헤르거니 닝토 꼰드 테르거니 mahakti nom na traga nom sat khiga da bani law law sa si nga si su ai nang gida mok telep li nang su ai gida mok telep yu chal si law
1: ka da da
0: pantung pham da
1: karam ba pantung pham
0: ai khoy ani gi
1: oi ro roi ju ba ra ji bu ma ka do da gi no khang de nga si di do maro ja ba gi lai sin nong phai na thamo ya ti ya se sin khare ai kana mata da waraudi itik suna jadi jubaras ki thamoisu khangjare adibo thaudo si budi karam banu pi hoy bina khang bangam ban pau maharas imai be maharani ya pam bajodi adumak thungan biyo khanedi masih bumba sih itik nata bayi hak na ning jeng mang jeng nana itik ni kalu ba miku kara yau kri madu na tuan ki bagak tani ai su kang da badi nate ai gumbi cak ni pini bi san sen bi ya mana sana ko nung adu da adu jubaraz nadi maya nadi
0: ai hak hing ling ida ai gi mang da नाग अदुम न खक कप पे यारो लाओ होजि मक चलसी
1: थादो पियु से थादो पियु
0: थादो लरो
1: जिंग बिगन थादो पियु करी मत खन था बिदा बरा हे न कुदों थी बम फम मम दा अम थुंग लगनी हाय
0: सुंग था थादो लरो
1: आइ गि दम त सुखर खन बियो महाराज की वायल से रख छुई दन फंगनी लई पाक प्रजा न तंग बिनी हाय दना सिरा तरकनी मदु सु फंगजे रखे तो lance da bi sung imana bi adu ki makada ayet pa ma o bi du di hak ti sung ngam ngam zero
0: ayet pa jet liberty mahak ni
1: ay hak ti to labi ni tu min na khang ngam je gani ali ko mahak ti ngam lo sho wi da na pa to ko gani si ta du bi yo hai ba in je da ba ki da ma wa ro bi gani ta du bi yo si ना महाराज खुंग लोई खरग लोई नने ले ले आई सिकी वन पारे कदाय देना था यने
0: कद कदम न रुक सिंग क्रसी कदम न सिंग क्रसी
1: लिम बिक्रो लिम बिक्रो
0: ना याउ देना या कदाय रिसु सल रोय ना सिंग क्रसी
1: आई सिंग ली ना रे पुनो भाजिन मा कुम दौरे ई गी इसे ला सी ले प्रि बिर करिनो पाउ पाउ न मा दौरे
2: ए काय दबा नंग नि सा दगे सहन तोले कोंग लोई सा शादु पादन पुको करियले पावने अदुने संगोन्न पुलमु ऊरवराई काई डबी नहाक कुंबिन हंदकी मपोक्तदी कोनुंगी महारानी नत्ते मीनाई फावो वेरडोई नर्षिदगी अमुखल्लु रगनु मचुमाने यहाईदुन ना तोंचाबीगु गुलाब कुम्न लाइशं योबरी खक्वाई थोक्तबने कप्ष नगनु लौनम चाबी मदन आइगे थमोय पेट कदा बनते लैवा कांग खोंग सहेली इनिंग थौ सेमगी लौटु नरम मि हायदना उपालस द पुल लग हिंग न मै थाबदा न थाय दु कनान कन बिगने कनान सु कन मंग मोय अदबु ए अदु हाक न थमोय कन बति नते मारुगे शरुक आइ वाश ताव मा खुंगंग अस थादक तु न चटखिगे दबनी ऐन खुंगंगम ताकनी मफ मधुर लोत्तुन लेगे दवनी मना शावन पीगनी सही

0: माया, योगो तो बके वाली
1: यावला नी दाजो बराज
0: माग सुई दन मके लेरम गनी को
1: आइंगोंदा हैरम बगा हैरा बदी लेरम भम थोए
0: खंग दी एको ये नी पुन्ची चुप्पा काई ना भाई बदु ओए रकद्रा माया लेरम द्रवदी आई शमुक हल्ला रोए
1: जो बराज पुनिंग तब थाबी को
0: पुनिंग अशे लेटा आवंग मुद्रे माग नहीं वो याम ना वारो रम्रा माया करी करी हैरमी
1: माग ना जो बराज बुदी वारो बिरम दे मियोई बगी खेना बा असा उपी सखारी बा खांग दे माफम खांग दे
0: अदु खक्तरा
1: अहोई
0: अते अते ऐ वो याम न सेरंगनी माग की थमो इतना हैरम गद बदो ऐ खंगले फजब सेंपाक तहाप मसू गान में लई गाक तन लई नत्ते मसू वाबा अपराजित तसु लई ने अहिन सिंह नरिपदी महाक नंगर्षी अमुं हैर कदरा मसू वाव ले रांग अपराजित तदो लेमन चन करे
1: मधुदामु कोई थोक लुबगी करी काना रुगदगे
0: तम मागी मपाव दो खर कप्चर बसु मधुदाई नुंगाई बंगम रियंगे
1: तोकलसे यावरकले गली ऐसी अरोई बदा वेरम गनी उखासी दंगे हाक बोथा बिरम महा की मापाव लोग जरूगे
0: माया ऐहा चंग भैया भी आते बगी आठंग श्लोर उको
1: जबराज
0: थिन्नन हला उको थमो ऐसी तब थब याद रे ऑन थो न कोई रहने
1: ओ माया नंग सिलाग ली बोले आई लाग लबनी राजकुमार गलोई नरक बनी
2: राजकुमार
1: महांग औसत नरे राज कैना दुसु रतनपुरी दहन खरे जुबराज ना नंग पुत सोंदो न लई अरोइब खोंजत लोइना नंगे खोंगुल लिरक लबनी
2: अरोइब होजिक ती करी तौरुगनी आई गिसु सोमदा अरोइब दु ओइ
1: करियाइब
2: नहा उरक दबरा सेम सहौरीब मयामदो
1: आई सो हेक चंगलक पदा सिंगरबने कई दंगई नो
2: नसी मगने
1: महाक तो दिकना नो
2: खुंगंग नसीगी संजी नहाने
1: इस नंगी दमक तक हल्लो बदा आई दी सी वो सीनिंगे कारी गया दुक यामनो सावरी बनो
2: साव बनती माया आई गी अमत तंगाई जरबा अबो की आथंग इल्लबने आई गी पुनिंग दी नंग न खंगली बदुनी माया भाबदी मसी न याम न फरेदा मसी ओर बदी पुनमक सुलोरने
1: आई न मंगोंदा करी हाई दोग लुगने आई नमरो है नंग न जतु न नत्रगा मी था दुन मंगोंदा पाव हाई दोग लुसो गली ऐसी की अरोई बहु खाद ले हो बने
2: आई ये मुक्लाई बक्ती भी सिबु संसार सिदा कनाले रंगनी हायो माया उसी का ये करी उपाय ले रही आई गंभीर पल्ला से लान मंगम भम थोक रहा नसी हाय बनु मिता सिदा आई ये रोई बदो लान बिरो माया चलो जुबराज बुलेंग सिन्हन भी है महाकी खुयाओ फुल लोग जाओगे अदुगा पुकनिंग दनी जाओगे नसी मक संसार से था दुख से बंगमन भी हुआ है ना
0: माया महाक ले उड़ा
1: ले होगे अदुगा
0: अदुबु अदुबु करी तोर बा
1: फिजोल फजन लई तिंग दुना चली बा मियो सिंग से उबिरा बा
0: माया
1: मंगोल गी सेनाय खोंग बकांग बुआ मा सेनाय पुदुना चली बा से उबिरा बा
0: भाप दारे ऐ भाप दारे मसुआ बोले रंग अपराजित पांबी कंग ले देना पुंसी गी वेना मुख सादरोय नत्रा
1: लेंग बदा दिलेंग सिलुखिसी महाक न कन्न हाई जरे
0: ऐ चंग ले रोए हन करके महक दिले हो रहा माया
1: अतबु महक नहीं हम नवारा उड़ा गने
0: warawning makai warushinu mahak pu urawadi apapata khangdana mahak pu puduna chinigak piyae
1: jubaraj
0: maya kari tawruni nahal makai lang jarak pa shen jarak pa mayamadu miku parshida lovi bahay beduni ngashigi namit ashidagi hena ningamda ba puning shibanabit ama ay mayok nakhidri ahina kutum chan bangam laroi dawa aso walan pamamani yengo ni paagi thamoi na ukadai dagi pino kanagi namakno mahakti mashi khang daba khum tawi ahina kitang shoy kibgi namakta maana ibo wara ukre ayko eniki warishu ngashidagi maagi mapamdati loi kre adabu ngashidagi anawa pandupama ay tamoy nung dari iba hugal lagani se maya kuziya si mawanda amuk bibiyo hai biyo punsiya si daayina ihan han na paijakiba anuradha gi kuzing danatana kanamatta gi kuzing dalhenningde duka kungang duda anuradha gi wari suloi binai roi
1: jabaras mahak pungak piyo ai hak ti loi na makhangi arshibad bibi ra
0: arshibad arshibad ai ngonda pauri ba kaina bagi awa ba she mahak ti amat pau da boysenu

0: हायु, ईशा आ गया पाम करीनो।
1: महाराज।
0: हायु ने, करीनो ईशा आ गया पाम बदो, ऐने सोय दन मक ठुंगन गनी।
2: पाबू।
0: करीमत सिंगन दन हायु।
2: ऐ गया पाम भाई बाबू, पाबू ने सुन्जल लकलब मतमदा निंथो कुबम, इनाउनी पादशन भीउ। अयाक दी खुंगंग सिदगी हंजर रावे।
0: अदो खक्तरा।
2: नचती।
0: हायु,
2: खुंगंग सिदा। आश्रम में निकट जुना, अतो नटा की सेवा फंग जुना, पुंगिंग शांति फंग न होने जगे पाबू।
0: इच्छा ना पाम बदतो, खुंगंग सी की प्रजा की बु, थोड़ी दुख न काय दर बड़ी, मजदा ऐ ऐयत पाम तलाय रड़ोई,
2: पाबू।
1: ताक पीली बु आप हम मसी बु।
0: मारा नहीं, मश्श न खाए देगी फरवनी, इच्छा ना अपाम बदतो तवरसनु, ऐ खंगे, ठिंग ब यार रड़ोई।
2: घनश्याम अश्विनी अनुराधादिम्फम वैखिवा आश्रम ने लम्मसे अनुराधा की कुंगंग ने मशी वैना अनुराधा पूर्हायन थोले आश्रम मशीना अनुराधा पूर आश्रम
3: मजा आएगी नशी दी नुक्षीरे बवारी ऐसी ताजे बता हाई निंगा आए लेते ने नुमाई जरे अधुगा वापम मम तंगा
2: करम वापम
3: रतनपुरी की मजाए बे मा शरण कुमारी बु करम तरोंगने ऐ दी महक की दमक और थोक नुमाई थे
2: चही अन्य की मांग द अशिवम बनुंजु था मद महक आश्रम में सिद्ध लागलम में आ मखाई थंग थंग बा मितुंग संग सिद्ध अहिंग मा नोंग थुके कदाम तक खंगल मौय महक लागलम में है बसे लो न लागलम में
3: ओ मजाए बु
2: महक नाई की खुया उपल लो के अदो का हैरम में पुंगिंग बु खुदम चन मंगम बपीन बियो मतम ममदा महक शु आश्रम में सिद्ध लागने ऐ नाई के मरुदा काय कर शुलेते
3: ओ अदो का वापम मसु
2: अनुराधा की मपावला
3: मानी मजाए बु
2: महाक की थमोइन आई बुहाक बिखरे आई की सना की खुजी दो महाक न लक्षण बीतना माया आधा मतम कुई निलेरम बने खुजी है तो लक्षण बिखरे है बगी पाव पंगले अनुभु घनश्या एक एक हो भाई की थमोइ का ना बसी नंग नमु घोल दो निमित मरी मंगानी दी आई कनाम तो उनर रहे पुनमक नंग न फरना बर्शिल को ऐ फमुंग दे हिप दूर गे हदुगा वारियर से अते इधर साधो कनो
3: याम न पनी मजाए बु पोथा भी रसी

हेलो हेलो हेलो कॉल तौबिरम्बिबा कॉलर से लाइन फंग्रबा माले मखा ताबा फोन कॉल अमुक ngai मिनासे।

0: हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून तराम नौचरी कना है बिरा बनो
1: ऐ निगम थोंग जाओ देगी नुंगे कपम तनुजा
0: तनुजा थेंग ना किताब कुई रे कम दो बिरी नुंगारी ब्रो
1: औ नुंगारी मैम मैम दी नुंगारी पो
0: होय होय अखोय आकाशवाणी इम्फाल की थौमी सिंह अनाय याउ दने याम नुंगाय ना अदुम लई जरी हाई बियु ngasi दी करी करम बवा फम सिंह पुखत पिगनी
1: मैम महांगे जो दम थौवे बको खोई छुरो मतिक से आगामी सही सूद नगारी कंथे बो ममा पाईबा चतम चलदे अखोज इचा पुरा थोड़ा पाखचरब गारीदे गारी चु नगे खरगम चतसीद मोने लीजिए नाइब है तारे गारी चतनी गारी कन कन थोद नाइब है तारेको
0: गारी चेक्सनजाकोदेन्सीद्रगसूनब नियम चुम चचरीगे याद तंजाथनबको पुनम चेक्सनसे इचा गारी मचा थब मोन इनखल्ब नुप मचा यूदी पेरेंसीना फजना थब चलदायदी मोन गुड आफ्टरनून लेडीस की थरम ममद टेलीफोन तौरब कॉलर सिंह पुखत्से हौगल्ब नहासी इचा इचूसी अफब माइकोम कमायन चटमीनसीगे है वाखलों अब पुखत्मे तनुजा चप मानेको नाइजे ममा मपाबू मचा कूपी चतप इंग वाखल लेता चलब चलीबू कायदना पुनम ट्राफिक की नियम खंग चमी है वाफम तु थे तनुजा अतोप करी करम वाफम सिंह पुखत्ब
1: लेजे
0: तनुजा ताबदीको नाइजेद इसम खुद तमलगे मैम पुनः तामीनसे खुद तमजगदर इसे सैदांग भी फम असिदगी ngasep माधुरी अमदि विद्या लक्ष्मी की अपुनब खोंजेलदा ओइनाम गीतना सैरांगबा ओइनाम सानौना सैरेंगबै सैनी

धन्यवाद आदित्य। ये आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। मैं वाईकोम सिंह खैंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत जतिन ललित का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म आई हेड लव स्टोरी से श्रेया घोषाल और सोना मोहपत्रा का गाया गीत, गीतकार थे कुमार और संगीत विशाल शेखर का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के सांगा चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म दिल चाहता है से उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया गीत, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म अरमान से शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत शंका एहसान लॉयका।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म रोजा से एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में, गीतकार है पीके मिश्र और संगीत ए आर रहमान का।

साथियों, इस गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए हाजिर है कुंद्राकम आदित्य। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ताइबंग पालसीदगी नोंमदे आइखोय गमनमक काइनखिगने काइना रोइदबा करीबु याउबगे निनी हुमनेगी पुनसी चेंजल पुदुना मालेम इमागी फंबाक थकसिना नहाक खक्तमक हिंगबगी कुमै याउजबने खोइरुगी थाउमैगुम लोइसिन बनाइब खोंचचिदा आइखोय थेंगनरी पाक चावरब लंबी सिगी लमदन फम कया कयादा अरोइबगी लोइबगी पुनसीगी हेंदोक हैद्रब चैखैदगी कनासु लान चतखिबंगम लोई मसी मक्तदा पुनसी न पुनसीबु नमथाक तौरे नुंगसीब कौबा तिंथौ मतोंद ताइरेन पुंगफाइगुम सेंगदबा थामोइगी लिखलादबु मांगथोकपिरी थाजब कौबा पांगल कनख्रब इहुलदुबुसु मचेत कया थोकना थुगाइरखदबदा थामोइदे इरमबा नुंगसीबगी मयेकसिंदी करमना पाबा थोकलगदगी

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी इंफाल हौजिक संदोकचेरी रेडियो क्लास थोरोमसी की चौह मरीफु मरीज सुबतांकता क्लास 5 की हिंदी लेशन 1 थोरोमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांग लोइनना संदोकचब थोरम ने

0: 마주 바자 바자 말라 이매암 사트 바칭드슈 영아영아가 라리파라니 난기 차이랭 아육 하이바치가 얌자나레바 아도디 라오라
1: 호이네자
0: 자슬라 야레 야레 파모 파모
1: 호이네자 네자 에딩아 한케 잉다바니나 칸데 양파제잉오 용도 아사바 아봄바 마추 마추 빌레이나타
0: 레이미야치
1: 아
0: 파제이 파제이 난게 차이링세 레이싱 아시가수 마리아듬 레이네
1: 에 네자 얌다닝에 하이비옴다
0: 레콜시다 사트리베 레이싱세 아사바 봄사트나바 봄리베 마칼 마칼니 아유키 맹라바니 미키 망알네 예이바다 봄사트네리 비레랑카야디 모몬 미녹 담제리 ingloba nami banung shit na humlak pata nilo yangune yangune nong pok thang ba mai ke irom da mung yangune yango ba
1: o o ore ore ne cha numi thola am dai gi ngra na ba ma sek na sana hin ba ma chu sin la thung na san dok li ya pha je ye ayu ko bi lai rin bi se
0: atu ne yango lap na tam na moti gum na san dok li yeng ja ba da uri wari na pukning harau tu jung li पात सिंग द खुंजागी ले शाबी सिंग ना नो क्लीवारी शारदुना नुंगाई बन थल्लबा
1: या भाई को कभी सिंग से मखोय ने इरी बेसिंग सिना ऐ खोय गिमि मांग द लेले बोय तनि हल्ली को
0: कभी की कोलोम से थौ खरबा जानी कदाय द करी फजब लोली है बसे मखोय दि हेक त खंगे मखोय द पोक पद की लोइना रखलबा अनौ अनौ ब उबंगम बगी ज्ञान मा मयाम द की तोहान ब ज्ञान मा मखोय दि याओएबा अदुनने मबिंग चलबा फाव कबी कया ममालेम छिदे लैरिसे
1: नेचा अखोय दि खुंगंग द पोकपन अदुना अयुकी फजबसे उइको सहा ददी नोग हे ngalak paga gari gi ayak pa makhot adagi zingana kupayumda nungsana yeibada arangba ayak pa mangana mi pang bangam de
0: jang jomi
1: ai khoi gi khungang si di adugum ba am ta ude
0: ude
1: upal wa pa labu lam hang ye ngu ye ngu khuding mak ta phaja ba gi phaja banga ka ko ne
0: mane mane jomi jomi yam jomi nang hai do ado para ma khamu sa thara chi ko
1: ne cha ai di ne ko si gi sai leng sam phaja ngo
0: hoi hoi hoi pungning chang na taro ko chohor da na bazar hang li chimni pum na mak thapak shu ba chat na ri
1: नेचा आई कई नो महंग हौद्रे
0: करीनो हंग हंग करीनो ब
1: कर अदु बुरा पात खुंजा गिले साबी सिना नो ब्लीवारी सारा दुना नुगाई बन थलबा हाइबदो
0: ओ ओ एंगो नुपी मसा सिंगी ख्वाइ देगी नुगाई बा पुंसी गी तंगकसे ले साबी फरक बा हाइबसिनी हाइबदि ले साबी वइना याम चाओ बदिना टेको पुंकक चाउरक बा अदुनी को मसीगुम्बा मतमसिदा करिगुम पोसक अम हेक उरुबदा मखोइसे हेक ते येंगनिङेबा खंगबा दगे उनामा मचीलेन बोइरो केलपोइरो मदुते सुने हेक त पंगोक ति नुङिङ बफावजानि मोइसे को इचम जम्बा फागी मजा मद सुने मोइसे थमोइ ति येंग ने हेक त पंगोक ति नोप मतमनेबा अदुनने खुंजागी लेशाबि सिंगना पातवारी सारगा थवाइता ननुक्लिदो खंगबा चोहरदति कैथेल सो बोलै को नंगबु खंग ब्रो
1: कसिना ने जागा एगा खुरि फिरो ने बचत लुइ दुदे
0: ओ जमिने अदो दि मखा मुसे थरसि को आयु हाय बसे दिएंग बद सु याम फजे अदु देकि लारिक पारे नुंगाय आयु कि मतम छे नेल खोंग बा लांग बा तौ दबनी ना पुंगिंग सोय थोकते याम फजना पाबंगमि फाबंगमि को अदुनने आयु ngana hakolaga larik pawana halamanching na hari se maram yam laye ba ko pukning hakchang ani makshu ingi dana ayu ki matam che
1: aseng bani ne cha ai sunya ayu ta lai pa ba sa yam nungai ngo thengjila adi ko sa ba na isa sa lebam ja bong khang de
0: mani mani
1: kumang na maro na ma sauri ba lai ka am ta jim phapu bangam da jani
0: adune ti ayu ki matam si mang halagum si na bungning chang na mutaro को पुलिंग चंग द दिने आइना खनाउ कंगै गांग सु कैम काना रुएबा अदुना तारो मुना को
1: होय
0: माइके सिन ब थुंगना नुंगाई बकी इरा छिन थरी मिपुंग खुदिंग न थामोइ द निंजबा अनौ बवा खल थबक न लाइनिंग वय जब पुम नमक पो तंगदु लैता न लैजना ब लंबी पिना बियो मसिद दि थोय दुना रुब याउ द्रे

0: उल्लास,
1: नुमाइबा,
0: रहा,
1: लंबी,
0: यानी अदो मथंग से दिने ने चा वहांग हंग बियो आये मुखुम गे बा
1: अदो ये दे आये वहांग हंग के को उचेक सिंग ना करी पाउजेल पी हाय रो
0: नुमाले हाउगत लो हाय ना पाउजेल पी
1: कना ना लेका फन ना साथली
0: लेरांग ना लेका फन ना साथली
1: गुड नोंगालकपदा अपोंबलेरांग सिंग कैदौवी
0: नोंगालकपदा अपोंबलेरांग सिंगना मोमोनोकचे
1: गुड खुनगिलेसाबी सिंगना पात कैदौवी
0: खुनगिलेसाबी सिंगना पातवाई सानरगा नोई
1: आइखोइना तंगदु लैता ने हिंगनाबा करी तौगनी
0: आइखोइना तंगदु लैता ने हिंगनाबा थबकन नसुगनी
1: आयुक हे याहोबगा आइखोइना तौगदाबा थबकसी करी करी नो हायो
0: आइखोइने हे याहोबगा माइमिता थोनी अदुगा संगोमनि खंगदे चानि खंगदे अमा थकनी
1: वेरी गुड आयुकि नो मदा तंगाय फदना तौदबा यादबा दुदि निपुं खुदि मकि चप मनागनि अदुबो ब्रेकफास्ट कि मतांगदि खरा खरा खेनाबलै को मधु लोरबा मतुंगदा माके माके मथौ मु चनाख्रानि थबक चतपना चतपा लाइ पाकातबना पापा खंगनि को
0: खंगनि ने चा
1: सोहोरदा आयुकि मतमदा करी करी तौबगि हायु
0: सोहोरदा आयुकि मतमदगि निलखोंबा हौरे
1: हौरे
0: मरमदि सोहोरददि अचौबा बाजारले लैबगा योनबगा इरांगलांगि
1: वेरी गुड
0: गारी मकोसु यामनाताय
1: आदेगि
0: को सिनमि सिंसु मागि मागि तौगदबा थबकता पुगनिंग चनि
1: वा याम हैरेनि अदैदि खांगनी को आयुकि फजबसे नंग
0: खरादि खांगनी ने जा
1: नंगने खरादि खांगनी आनो खमिदो याम चमनी मरमदि आयुकि फजबदि थाबगि लोइब नायरो मौसागि फजबना थल्लबा मणिपुर सनाले बागनी आयुक को बि लाइरेम बिना मिपुं खुदिं मकि थामोय हुरगे मतागु नोंगान बंगायरि उपाल वपाल खुदिं सु चिंगलेम न लेपली मालंग बनुंग छिने येबदा सोंथरबा हकचांग ते खथली आयुक नमियोय बबु छिनथा पिरि
0: नेचा आइने सिदि याम नुङाइबो आइने ने खांगमदाबा मायाम मखांगबांगमे आयुक कि फजाबना ताइबंग मियोय ब आइखै बुथावना हापी
1: हापी
0: इथौ बांथोकना बा इनसिन बिरि याम नुङाइ नेचा हाखै आइदिना इचमचमना कैमते खांगदना
1: लैरामबनेबा
0: अतो नसी दि मैं आऊं खंगे हायेंगे सु आई बुला रे दुम तक पियो को
1: तक पी नी करी की तक पी ते नी सो याम न थवा या रो दबु तक तब यारी पो तक थोक के अदो मथंग दि करी वाले हाय रो दना
0: मथंग सि दिने को ने चा वही परे म पुंग फान ग दबने
1: वही परे म पुंग फान ग दबा ओ अतु ते आई न वही सिंग दो हाय के पा नंग ना वही परे म पुंग फान न बा वही हापसि ल पंग गतरा
0: ngam bayenge अदो ngam da bayar di ne chana tak piu ko
1: take take अदो nang na na akhang batuna khang hi khang da batuna khang dre na hairo ko
0: hai
1: adu ti ai hara ge ko sab ki man me
0: nutan chaha
1: karma man kar
0: puja sab ko
1: jivan ki raha
0: te karni
1: good good yang hai re kanu hono ko honara ga ngam da ba lai da ba ni

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अदम्य धर्म ताबिरी बस से आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल देखने हाउसी अमुक्तामी ने से मणिपुरी मतमी से खुदोल के अहन बदा लांथक चरी सगोल सेम बिशरूप सिंह की खोंजल दा तबानु खुराई जमना सेरिंग बु मतमी सेमा

0: adom na tongan tongan basai sak pasing dikhi matami se ani khak ta bire agas banim fal hauje amuk lan thok chari isai saktam ratha jatra thoram lan thok pigadaba all manipur music association aiba adhikari mayum rameshwar sharma
1: जय जय श्री जगबंधु की
2: जय
1: जय जय श्री बलभद्र सुभद्रा की
2: जय
3: श्री श्री जगन्नाथ देव की पूजा सी इफांग नाइन चेलकपा इखुत इचेल कयाना पुलप चेन छिलकपा समुद्र इपाक अचोव गुंबनी नोमा मालोब देश की निंगथौ इंद्र दुमने मंगदा इबुओ मान तापीरमी
4: समुद्र द ताऊ दुने लेरीबा दारू उकक असिलो कलु अदुगा विश्वक्रमाव मोटी सिंह से सहलु लोइद्री भाव व थोंग हांग दो कनु हाय ने सुतक पीरमी
3: अदुबु महारानी गुंडी चाना कन्न तक्षण बदेगी हाय न खिव मतम सुदना थोंग हांग दो लुरी अशुम ताऊ दुना मूर्ति अहुम हाय बदी बलभद्र सुभद्रा अमसुं जगन्नाथ अहुम मक्की तंखाई दंग लोई शेलब मूर्ति सिंह सी निरूपोन तौदुना पूजा कटप हौखी

0: nung jo tha hai ba se sahi amagiri tu singi mahut sili nung hai ba sina taibang miwai pan gi harau tayamba amasung pangal sakti paujel pu ba khudamni maramasina ingen gi pangkhalakpa nini sanbanumitta sri jagabondhu gi kum khuding gi saurba rath jatra gi usob ase nilasol urisa gi sri purida pangthoi
1: भगवान जगन्नाथ की रथ की मम्मी नंदी घोष अदुगा गरुड़ ध्वजा हाई न सुकोंगे भगवान बलभद्र की रथ की मिंगना ताल

0: रथजत्रागी मा पनि सन्बनुमित इंगेन गी तरानी पान बनुमित पूर्ण जत्रा कांगलेन गी थौरम पांगथोपो ओइना अमुक कांग सिंगी
1: मसीगी तुम इंगेन गी तरानी थोइनी पानबदा इबुंगोन सेपखि मसीबु हरि सोयोन हाइना पालन तौनै अदुबु इरमदा मसीदा दी हाइरिबनुमित असिदा निंगोल पाली हाइना पांगथोपनै

0: ngai ko ta ki si ta bi kre thorum san dok tu na tan zari ba si akashwani phal gi fm sangai channel ni pum pham si da san dok seri sumang lila wari loidri aroi ba saru sana bi ri ba kang bu iram da manipur artist association gi lila kang bu ni haujik ta bi ra si sumang lila wari loidri lila si gi aroi ba saru
1: ibungo bukana no kadai de gi lak ibano
2: imai yum sibu yam nung sijeba miyo yamani ma
1: ibungo huji kudak sidai ibungo mag yum sida lengbi ram draga de imag imung se kari to kadak e kanana su tam ngam de koi ba
2: pare sema to piro sin ado ima thadoi bu kari bibam dale bilge hoji bo kedo gi ma
1: isa dia mongong ta dre dai ibungo
2: ai sibu ima thadoi kedo bu yaroge
1: mangda hada thokadaba thodo kumlai bungo na mata sunat nai chagi kidni ani mag pheloi duna
2: kore
1: hujik pamung de yata duna
2: kidni ani mag phel
1: iman paisa pai duna ichagi da mag kidni donor thire ga ichagi kidni sin basu iman upai leitre imaga e janaram dene imada yauri bakidni sei sagi demak pirege ai mesu ibungo imaga e janada bani nei imada gi upai leite
2: do ima
1: ina nunga ni marakta hani oiduna leiri
2: doctor di karam doctor dana birige ma hoyo
1: kariya nephrology gi doctor tomba iduna yeng bani
2: doctor tomba
1: imana isagi kidni do pibangam da bani nei sa do yum da putaro
2: parece mato pirose mukan nuai da bukan birano khoi me am lai sidi adoi phana blai ngalo re si
1: mema ido bolo mara ma pan thore si bo kai do bolo ma pan thore si bo kai no zuki ma khol do bo kana kai do biao khra gi ma kai do ro gi kari ma khon no kai su tau di imung da ning thi na po tha do na lai gi hai dra ga nung si nung sa ma sa kai do bo thore no ba kari ta tau di Chi pamu pamu mo ibungo hima sakramali ni kaino ngao bu ngao bra kaino kadai de gila ko no kana no hoi mai hairam dana hima ai pe ma ngao ma le dana
3: ima victor julin thoi shoi na kau khi bani ma khoi ni shula ni ma
1: bi ma victor gi thabak to karma matam da chakani hai ge ne karino nang ma mu kauri sibo nang mi gi ahalaman gi thamoi sok pa ya ba wa ti nang amuk khana nga nga no koi be ma
3: adu hum ba wa do bai na ke do ba gi hai do noi ma ma khoi na khali ba de su chu me bikter na da chat ka da ba khol ka da ba ta su chat na chi da mo hospital da mo koi chat chat na lai pa bu su ngam na roi da bai gi pun chi chi
1: be ma
4: ite mi ju
1: upai lerek traba tola taraba matam nadi kana na su maru mapang sangwaining ba hong nadi ai kana da su yelo ai kana da su yelo kakano kari ki kapli bano imala ri sidi isa kari su tora imala lai phong ku ding chat na isa gi thawai ni gani isa kari su tora ai kakano
3: ima lai khrom ga kari bo kana ga dori bano
1: ai de adu mai na hai ga miyoi bai khoina gi shakti na thabak tawba ngamak traba matam da ishor gi shakti na muk thabak tawba hui hainari badu di se se ma tang phamo se patau se ima kai then ma zada thoga lai khuram na ba potu ta lei ru ge tana nang mu na tom ta lei ho ba ngam ga dro
3: hoi ma
1: ima thure ngai lakke ka ka nu isa ima lei ri sidi ima thune lakke lai khuram na ba potu ima thune le
3: ma
1: me ma
3: ma
1: mua sa xiao rei de na hu jik ta noi la ka ne ne cha na cholam ba da ngai ri ba ne lao la sango la cha sing lak pa yam nong ai re
3: pha do hak sang ki tang nong ai ba au kar nong ai re chong mo pham se lao ai
2: ima bo thobok cha thopi ga dare ma
1: ima ji isa gi lai khrom no bo po to ki te lai ro ge kai the ma za da tho ge ni ima ji taw ram ma ni isa ma tom taw hun dok pa nong ai ta da ni ima ji sum lai ram ma ba noi lak pa yam tan cha re bi ma wa ro ga no kwa isa ga nga ta di lai bi rom kho ai thuna lak sa gi lai khrom ro bi po to noi lai ring de ima ta la ho ro ge bo nga tang lai bi rom kho kwa
3: Victor nang kan gan cha tu no
2: baba oi no di अतक की हफ्ता आज तक सलो नहीं बने अदो आई की सरपसत तो वो करीम तक खलुनु था नंगे हक्षांग दो फना वो यंकी दोइने
1: ये ऐ दे काबू ने हादो ऐ ये बने अकुल प्यार वेल की फोटो सिंग दो नंगे इंद्रा से ये वो बत
3: इंगा सीधे करीम ता हिंग बो पोक ट्रे
1: हादो ऐ
3: ऐ ना कोई नी दो वाम ता हाज जगे तो बने ऐ बनु सीबी रबड़ी शोए दने या भी उको
1: कई वानो हायो हायो से हादो ऐ
2: नंगो डॉक्टर नुआई तो वकन खन खन नहाय दैने किदरोगे नंगो
3: एनंग सि हाय गदर बवासे नंग न करी गुम बया बिद्रबदे नंग नै बनु सि हाय बदो मिनम बदे
2: थादो इनंग सिमा हाय गने वदु दुम हाय रोके दरोगे
3: दोरे दि नंग तो वसा पियो एन हाय बवासे या नि हाय दना
2: नंग हाय बदबु एन वसक पु वसक तब करियम लेगे
3: अदो रे सु प्लीज नखैनि वसक पियु बा
1: थादो नंग सिमा से नंग हाय बखुदिं आइ लोइने यागनि सेकाइनो हायरो से हायरो बा
2: दोय पिथिबिम पु खुदिमंग ना आइगे मायोक देले खरबसु आइ दि नंग गिदमग लेपकनि नंग हाय बक निमक आइ लोइ यानि से हायरो
3: नंग थेमा खिबा नंगा सखंग नखी बंद मित्तु देगे, ऐन मंजा की बा मंगा मखंग ले।
2: करी मंग।
3: ले साबी कुदे मंगा, माह की नुक्शी जबा, माह तो की मरम ना मंजा बा मंगी दा।
2: तादोए।
3: ऐ कोई निगी लोग मन मित्ता, नंगा ना माना बा मयाम का दोन थिन ना, कोई ये तो नहीं बोलो बोलाग बा। ऐना रे मम्मा कई के दुरे नंग मुंगाई जब तो दो आना मम्मा बोक्षी मागे
2: हे थादोए कहीं नो नंग नंग के दरोगे थादोए नंग नमँ के मंगो
3: नशी है ये खंग जब नहीं बिकता
1: थादोए कहीं नंग आगे दुबो जे अतु माँ हाई बहुंग दे से
2: कोई सेमी मुंबो कोई रंग से थादोए
3: करमरा ए लाइक करमरा हेमन क्रे माने माय चागी पुंछी दोत पछि आ हेमन करे ए लाइक करमरा
1: दोय से से तो ओबा से ककन नंगवार तो ओबा से से बता दोय तो ओबा से अदुगी मोतने नंग नंग साई हाय गन इ हाय बवा दो अदु तुम हाय रो से ए एम तानिंगे बा से हाय रो बसे
3: ए न मंगजे खिब मंगसिंग दो पंग पाउ नान मिउ को
1: थादोय
3: बिकतर नंग ना आदर सच नहीं मतम ऐने सी जो नहीं मतम ना नंग लुहोंग भी हो बिकता
2: तादोए
3: नंगी लुहोंग बगे कोई ये पदोरा गए चीज़ करके बिकता नंग नंग लिंटो गलो तादोए
1: कहीं नंग आगे तो नंग आओ लोग तादोए
2: कहीं नंग है तो थोड़ा है, नंग कहीं दरोगे थोड़ा है, ऐसे नंग की तो मुगले पीछे दिखता थोड़ा है, नंग कहीं दरोगे बता थोड़ा
3: है। तो कोई ना साइनो असक्र बंगाक तन ट्रा, ऐसे निंग बस हिम्मत दे तुम्हारे मियुबा प्लीज, ऐसे करो
1: माँ थोड़ा है, हिम्मा, थोड़ा है, नंग
3: ने तो मैं हाय दोएगी, ऐसा लन से लिंग थोड़े से लोग से भी हो
2: थोड़े
1: थोड़े से पर हम साधन निगाह तो बनो बा लाओ से लाओ इमंग सांग अगर तो पता हो लाओ वो बसे
2: ओए शुभ रे तो वादना तू क्या मोहल्ले तो कैसे बोलेगी ना 이몽 장한 포 타오라오시. 실로.
3: 하이 나이 보아시 야를 소모디 너 코이란 마타요나 소야 카노이. 나 코이부터 모이시는 눅시나 마타야오데 너이. 하이 나이 시로 마토나 너 코이. 아기 못 보내라 이 마나 못 보내라 카노이.
2: 카노이. 카노이. 카노이. 카노이.
3: 카노이. 카노이.
2: 카노이.
3: 카노이. 카노이. 카노이. 카노이.
2: 카노이. 카노이. 카노이. 넌 남이 동도 바로 다도해. 넌 그대로게. 넌 그대로게 다도해.
3: 다도해.
2: 남이 동도 방어 해보네 다도해. 다도해. 에이. 넌 이 닝마 통나 보게 되면 넌 나 해. 와 쿠디 막 에이로 이해하게 다도해. 넌 이 닝마 통나 보게 되면 에이. 린토에게 쇼이들을 놓은 게 다도야.

ne mil anine na anine mari na tol aniga manga taruk leire ga ba ya tari leire sin asig tari ni khangi thong anisig ni ban mapal leire ga ba आई वो सब ठोंगी तरा हूं दो ने दे कराई कराई लवाई ले पुआंगां ओरिंगे दे पेपे लाव दो ठोंगजांग नी खुमरांग अमृत देव अनी ये दे मसु ठोंग नी आई वो खोजी खाद उपठोंग लगे थों को दे कुंत्रा हम दोगी मनुंगा खुजी खादा मबू मन उपथोर पदा इबिये मगे सवों सकता अपाम सकतम उरुकबा कुरुगे सा निकलंगले अतिंको सिदम मरु सिदमना

कांदा हरा मठो कादर लेखी आई भी मतलब मधुदा नुराई भी में खोई नो उड़ा गुरु सिंह ने उयंग लनिंग था

Nuraycığım koynu kongi kua leymri lahayna tolevi na pari hongi mamin tolu resila mapugi haynatın illa akbani mapugi na haynamatın illa akbada pari mungatiya asib kunjintu thaba ai khoi di ima ipale jedi ati yanga asib ko kunjin tu thaba hunu pakhum jerakle a pari naman bukpa na te namagi apam saktam thibam ubada pari nang mu khoi na khoi ahum se पार पुथोक बनी ने न कोई से यमो थाजे दरगाह देना कुलों की शक्ति तो थाक पुथोरक भोग पाय बंगों ने ना न चाय कोई हुया जरी पनों तक भीग दे बनया थंग

0: ngasigi na hasing hayeng yumbini lamchat mangtharak laba na hasing tunglamchat ki phawam gumbani miyoi amagi lamchat chajatna mi dugi punsigi yanglen saruni phanamatik chabsu oisenu phanayam na sangalaibasu oisenu lamchat yaugdraba mahaktudi khunagi yeknabani mikok thongba tunggi khunai amagi damak haurak liba mirol singi lamchat chemsi haiba wapham sigaloinana ngasi amuk puduna lakchari चयोल की मपाउ पूब थौरम चयोल सिदा पुमनमक पु ताराम न ओपचरी थौदोक वाथोक कया न थल्लब मालेमनी हौखिब चयोल सिद थौखिब थौदोक वाथोक पांगथोखिब मरु ओइब थौरम कया की मपाउ हयेंग थांगजे नुमित अयुब की पुंग तरे ताब मतमदा खोंजल नाचोमद संदुक चगदबा चयोल सिद मणिपु थौरम असिदगी ताब फंगबिगनी थौरम पुथोकपि सगोल सेम रोमा पिकलब इरमदम मणिपुर साना खोनबना मालेम द सक्ताक लिब लमदमनी हौखिब जुलाई तांग मापल दगी तरानी थोई फाउबा चाइना गी ओर्दोस तपांग थोखिबा अहानबा एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 ता ब्रोंज मेडल फंगलखरबी हुइद्रोम भुमेश्वरी देवीना असुमन फोंगदोकली
1: सानरो एमगी गुनसे करी करी चेनगनी हन खल्ली भुमेश्वरी की मोटा
2: आइगी मोटा दी सानरोय अमा सजना के नोटा गहागदी सपोर्टिंग सिस्टम सिसु यामनगर ओय हन खल्ले के गुंबा ओदासोम ओदा कैलास ओदा ओदा कोसना मोय होम अदगी आइगी ममा गिना मबुं आइगी मामा अदगी स्कूलगी आइगी लंदिंग वयागी स्कूलगी मैम मोय मैम ने सपोर्ट दवा दुगा आइगी फैमिली मेंबर ममा आइबुं अदगी दैगा फैमिली मेंबर मैम दना एंगोंदा थाना महापिया कांदा दुगा आइना मो मोय मैम ने आइगी मन गेट तो गाइन के दो बेंग मोय हैगा डिसिप्लिन लेगा देगी कंसिस्टेंसी देगा माइना अदुम ला ला गा ए नो मदि सोइ गन गम नी हैगा एशियन आइ ममांग दो सो एशियन कोसन ट्रेड ग्रुप ता 6 किलोमीटर द गोल ओ बंगम खे
0: मियो बेगी पुंसी द थोक लिबा थोक दोक वा थोक कया लीला ड्रामा सिनेमा कया द उबा ताब फंग बिरंगनी अमरोम द लीला ड्रामा सिनेमा गी वरी सिंगा चप मानबा थोक दोक वा थोक कया मियोइबगी पुंसीदा थोकली उरी तारी अवाबदा अवाबा पियु नुंगाइबदा नुंगाइबा हापु हौनबिनी पुंसीगी असुमना इसैगी मयक ओइना सखनरी पोकबदगी नुंगाइबा मसरुक फंगजरक तरबा अवाबतन मसरुक ओइरकलाबा पिसक पिकलिङैदगी मथोत कारकप जवोनगी पुंसी फाउबा ऑर्फान होमदा मपुंसी ललखरबा कानालैजद्रबा तंफा अमदी वांगलेन युम्बान पुंसीदा खोंगदारखी पुक्चेल खोजेल तिनना सु नोमि नदुना नाउपुरी बा मचागे आसादे हिंगलिङै थोहन निंगदबा तमथिरब थोकदोक अमदगी मखोय अनि लापनखि तामनखि मतम कुइरबगी तुंगदा कैथेल द पोटफम फमदुना लैरमबा तंफा वांगलेन न थेंगनखि मतम सांगना अमुक्तबु थेंगनरबदी हाइदुना थिजरखिबा महाकी लोइनबी तंफा थेंगनरबदा करिगी वांगलेन न अंगाउबगी सखलोन लौदुना तम्फाबु सेनजखिबा ममै थंगदकारी थोखिबा हाइबदु लाखलिबा नोमाइजिंग नुमितकि नुमियुंगबा मतुंग मिनिट तारा चटपा मतमदा अजित कुमार लाइश्रमने इबा नंगसे आइगिदि थवाइनि हाइरिबा रेडियो लीला असिदगि तामिनसी लीला पुथोकपा माइबम इसाकांता पुथोकपद तेंगबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह
3: अदो ओले नुइनि मक्सि सुयिंगबा फुनमतो पाइदबोमा
4: होय फोन जे पाइबगा पाइदबो समानैदा कनादबो तोलदोइन खै
3: ओइ हौसिकिम बतमद फोन पाइदबायबसे अतांगुन अमो पायु कैनो आइमले बिगे
4: यानेदे यानेदा आइखै फोन सिजन फम थोइन रेदेदा
5: चटलिसिबा नु छासे आम छायाबा
4: होय होय
5: लाओ
4: आइखै मुसलुखिगे से
3: हो हो हो हो अदो ओइ नोंग मपुंजि हायबो तो काउनिको आइने खल्लिबो वखल्सिबो ओइदोरिजाल करी तोरग मुइगे नक्सनगने आइ उपायमदि थिदोयाति
0: अरीब मरुदगी अनौव मयोल चोंलई ngasigi thokdok hayengi poarini ngasi ngasimak hingliba mirol sina tunggi mirol gidamak kari kari tofam thokpa khanthaba mathau tarei लाखलिब जुलाई की तांग तरामापल नोमाइजिंग नुमित अयुकी पुंग तरे ताब मतमदा खोंजल नाचोमद थमजरी सक्तम ngasina hayengidamak taramathoi suba tangkatta singnung ifut aiba doctor khangembam samungau थौरम पुथोकपी नोंगथोमबम रोमा तेंबांग बसिंदी लाइश्रम नीलचंद्र अमदी खैराकपम मीनाक्षी
6: खुंजा सिंगी मरक अमना मद मरालसी पाखत खने खुंजा सिंग खनब खामबद खुनबुसु मकोक्षय यामनो वाई

0: 아파바 마자 아마기 학득다 서르가 여위 팟다바 이사 아마기 학득다기 노로키코 옴드다이 마마 마파 오이베싱나 호너자리바 뿜나막 마사 싱기다막다니 아파바 이사디 아폭파 아폭피 학득기나타나 봉나팜 람담 이마기 수 자옥톡자닝아이니 람담시다 퀘리나오팜다키바 아파바 마파리 마몸가야나 람담시부 말렘드 삭탁리 लाखली युम चखई सनुमित जुलाई की तंग कुन्नी थोय नुंगथिल की पुंग अहुम मिनिट मंगा चटपा मतमदा चिंगलोल मापल की वांग मदगी थौरम मसिद थमजरी हिजम सुरजलता देवी रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल शिप यूएसए गा नोंगथोंबम रोमागा उनदनवारी साबा पुथोकपुद तेंगबांगबा इरेंगबम अजित कुमार मैतै थौरम पुथोकपी नोंगथोंबम रोमा
1: ngasi chinglon mapal gi wang madagi hariba thoram masigi damak akashbani imphal gi studio da lengshin biribasi hizam surjalata devi haujizik royal caribbean international sea usa gi hariba cruise sifa sigi crew member amsu viribani jahas sobasi de tung laga chatpa gi khongshat sidane punsi da khwai de gi nungai ki ba mikup to madusum tang ningsing biraga di mayam so ta mayam su tab de nungai gani khalle
2: ai gi journey je da khwai de gi nungai gi ba high boy taraga di northern lights सीजे आई गी मांग द सेम वेन उरक बजे सीमदि याम द नुगाई गे इंगोन द अदुगी नुमिचे आइना ग्रीनलैंड द लाको मतम द ने कैप्टन जिन द अखोई द अनाउंस औरे नॉर्दर्न लाइट थोले थोलो आना पुंग तारा मा थोई द मुता रे मा अनाउंस र बजे द अद अखोई न थोला का जे द अहम द दि उरम देब फोन द कापा का द पिक्चर द उरम मेब अदु गु मित द उरम देब अद अखोई जे अस न हाया ग दुम लाए दुम अद गी दि पुंग बारो मा खाय सांग उता को मतम जे द अमुकम
0: Music is universal language. Lakliba julai gi tang kuni thoi numidangi pung taruk minit tara chatpa matamda naharol gi khonjal da tahan jagani local band sing dagi nongchuplong gi isaida pendulum sing dagi life is beautiful.

0: गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं,
0: कुछ भी नहीं, गरन में वो नहीं,
1: वो है कौन?
2: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
0: नाम?

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आज हर सिंगार लेकर श्रोताओं स्टूडियो से साथ हूं मैं आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम आप तक पहुंचती है और साथ ही सदाबहार गीतों मेरा चाबसा प्यार का वो प्यारा एहसास जो सदियों से हमारे दिलों को महकाता आ रहा है, कुछ ऐसे ही सदाबहार गीतों से सजा है आज का हर सिंगार। आज साथ रहेंगे कुछ ऐसे ही सदाबहार गीत भी। कहते हैं ना, प्रेम का अर्थ ही है निखरना, बिखरना नहीं, हमेशा उस जुड़ाव को चुने दोस्त जो आपकी आत्मा को सुकून दे और आपको खुद से प्यार करना सिखाए। एफएम गोल्ड कुछ जुड़ाव ऐसा ही अंदाज लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज के हर सिंगार का आगाज इस गीत के साथ जो कि है गुमनाम फिल्म से, और इस गीत को आवाज दी है रफी साहब और शादा जी ने। आपको बता दें इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आगाज करते हैं आज के हर सिंगार का इस प्यारे अंदाज के साथ 100.1 में।

विवेक मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ ऐसे साथवे मिलते हैं जो आपकी नाराजगी के बाद भी आपसे जुड़े रहते हैं जी हाँ कुछ ऐसी शख्सियतें जो आपके इनकार पर भी आपके पास ठहर जाया करती हैं आपकी नाराजगी पर आपके मान जाने का इंतजार करती हैं उस शख्स से कभी खुद को दूर मत कीजिएगा जी हाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त जी अगला गीत आप तक पहुंच रहा है जो कि वारिस फिल्म से है लता जी और रफी जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज से सजाया है राजेंद्र कृष्ण जी ने और संगीतबद्ध किया है आदि बर्मन जी

10.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और दोस्तों, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जीवन में कभी कभी ईश्वर के दिए रिश्तों से गहरे वो रिश्ते हो जाते हैं जो बिना नाम के होते हैं, जहां आपके लफ्ज कम और एहसास ज्यादा होते हैं। बड़े होते हैं ऐसे रिश्ते, बचा के रखिएगा ऐसे रिश्तों को। जी हाँ, ये सुनते हैं शर्मिली फिल्म का ये अगला गीत, जो कि जिससे आवाज दी है किशोर जी ने और अल्फाज दिए हैं नीरज श्रीधर जी ने। इस गीत को संगीत से सजाया है एसडी पामन जी ने। तो आइए सुनते हैं कुछ गुलों की ये दास्तां।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
4: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

101.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल दोस्तों आप सुन रहे हैं और हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज कहते हैं कि गीत संगीत का कोई भी अंदाज आप सुने ना दिलों को महका जाता है कुछ यही अंदाज 90 के दशक से हमने आपको सुनवाया जी हां आपको बता दें कि दिल ही दिल में फिल्म से ये गीत था अभिजीत साहब की आवाज में इस गीत को अल्फाज दिए महबूब साहब ने और संगीत बद किया AR रहमान जी ने जी हां दोस्तों हर सिंगार का ये प्यारा अंदाज तो आप सुन ही रहे हैं साथ ही आपको बता दूं कि बड़ा प्यारा एहसास है कि किसी के उजले हिस्से को देखकर साथ आना तो महज एक कशिश है बात तो तब है जब किसी के अंधेरों को जानकर भी उसके साथ आप रोशन होने का हौसला रखते हो इन प्यारे एहसासों के साथ फिलहाल आज के हर सिंगार को यहीं समेटने की आपसे लेती हूँ इजाजत इस गुजारिश के साथ कि सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और दोस्तों ये प्यारा अंदाज आप सुनते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 100.1 MHz पर 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का 11:10 पर मार्केट मंत्रा सुनना ना भूले और अपनी पसंद के गीतों को मैं लेकर आऊंगी 11:40 पर गीत मेरे मनमीत के अंदर जी हाँ तो इंतजार कीजिए हमारे प्रोग्राम्स का हमारे समाचारों से सजे इस अंदाज का तो फिलहाल आपको सुनवाती हूँ एक ऐसा ही प्यारा सा गीत जिसके साथ आपको छोड़े जाऊंगी जी हाँ इस गीत को अल्फाज दिए इस गीत को अल्फाज दिए हैं आवाज दी है रफी साहब ने और जी हाँ नींद हमारी

0: आखिरी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एस पी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया. हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई. इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया. वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%, कैंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid-small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and Realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर ₹96.28 पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है. यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है. तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है. और तीसरा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से. वहां पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया. लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है. उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारे ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है. युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है. हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट Nifty Bank went up by 1%, and you mentioned about corporate results. The first quarter results are now out, and we can see about four banks have declared positive results as well. What has been the reason behind banking performance at the fundamental level for our economy?
2: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly. Because with this support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year. Because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many countries are facing such kind of problems like the banking stress. But in India, our banking system remains very, very strong at every crisis. Whether the coronavirus or the before that Lehman crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
0: So there's no liquidity issue basically as far as
2: banking. I don't see any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
0: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
2: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results and that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
1: एसपी अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तो जिसमें एफआईएस और डीआईएस की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हां दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहां पर यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं
2: देखिए इसमें ऐसा है पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है जो एफआईआई और डीआईए का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है खास करके एफआईआई काफी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है देन दे पुल देयर मनी एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट
1: बैलेंसिंग
2: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स अभी तो हमारे ऊपर एफआईआई का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन्स है वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन सम देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है
1: ओके
2: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूं लेकिन ओवरऑल जैसे एफआईआई और डीआईएस का मैंने बताया इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्राजेक्ट्री में देखेंगे दीज आर

0: significantly. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म का मीडियम टू लॉन्ग हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप्स
1: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks you've seen that index heavyweights as it is mentioned in the story as well gains in index heavyweights a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9 to 12% on the Sensex went up by 2% and as a result we saw the Sensex also go up what is the prospect in the oil and gas sector
0: prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment. And we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive. And we have great possibilities to expand the businesses in this segment. And that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10 to 12, 15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
2: और आगे बढ़ते हैं एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है ताइवान का ताइएक्स 6.5% जापान का निक्केई 4% चीन का शंघाई कंपोजिट 3% हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे एसपी अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमी कंडक्टर शेयरों का यहाँ पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है
0: देखिए जो एक तो वापस जो जो युद्ध है जो वॉर है वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है बातचीत है यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही है उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही है जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे तो उनका एक सस्टेंड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है
2: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं
0: देखिए भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की 10-12 वर्षों में की उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे अप्रैल मई जून तो एवरेज जो है 13% बनता है एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स डिमांड इज डिसेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन द हाई डबल डिजिट्स तो एक बहुत बड़ी चीज है और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें दैट इज लेस देन 4% इंडिया इज 6.5-6.6% आप अंतर देखिए कितना है तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्प्लीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से ये आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं.
3: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
2: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है, और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है. एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर है कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है.
0: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है, और अभी ये हमने न्यूज़ देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफ़ी वीक से इनमें बढ़ोतरी है. तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीजें मिलके कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो, और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है.
1: Right.
3: Moving on to more news. The Office of Economic Advisor, OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade will release the revised series of the Index of Core Industries, ICI, with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the revised series will replace the existing ICI series with a base year of 2011-12. The ministry said that iron ore has been included as a core industry in the revised ICI series, citing its extensive use in industrial production and its significant contribution to industrial development. With this addition, the number of core industries has increased from 8 to 9. Now, how do you see the inclusion of iron ore really redefining how we look at core industry data and, for that matter, factory output?
0: Yes, Arjun, these are very strong developments. We also revised our base year for the GDP, for the inflation, WPI, CPI. And recently, government has started a new thing for the services index that will indicate the growth story of the services, because we are services dominating economy. So now this ICI is also very important, because core infra is also backbone of our industrial development. But the base was very old, actually, 11-12. Now the recent base, 22-23, will make a great sense and provide the real picture of our core sector development.
3: In more news, Gujarat has emerged as a top performer among Indian states and union territories in the Investment Friendliness Index 2026. It is followed by Maharashtra, Tamil Nadu, Goa and Odisha as the top performers. Niti Aayog today released the Investment Friendliness Index 2026 in New Delhi, outlining the states that are best placed to attract investment as India pushes toward the goal of Viksit Bharat by 2047. Niti Aayog said that Gujarat's strong port operations and power sector, Maharashtra's ability to attract private equity and venture capital, and Tamil Nadu's infrastructure and export performance have contributed to their high rankings. CEO of Niti Aayog, Nidhi Chibbar, said that the index is not intended to be merely a ranking exercise. Rather, it is designed as a practical reform tool. She said that the index enables states to benchmark their performance, identify priority areas for improvement, and learn from one another's best practices. So tell us about this friendliness index, and once again, Gujarat as a top performer.
0: Yes, Arjun, because Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, these are industrial states actually, and performing very well, not only the manufacturing but in the exports also. Gujarat, Maharashtra, they have a great share of in our overall exports.
3: Also land banks
0: is there, so that's why these states are performing well for the investment attraction and becoming more and more robust, and also along with ease of doing business. They are also the best performers in the ease of doing business trajectory as compared with many other states.
3: In more news, the Employees Provident Fund Organization, EPFO, has launched the Vishwas 2026 to facilitate amicable settlement of disputes relating to levy of damages and penalty related disputes. The Labour and Employment Ministry said that the scheme is a one-time dispute resolution and provides employers with an opportunity to settle eligible cases through a transparent, fully digital and time-bound process. It will remain operational for a period of 6 months from the date of notification. The ministry said that it has been introduced with the objective of promoting voluntary compliance, reducing litigation and enabling speedy resolution of long-pending disputes relating to penalty and damages while safeguarding the interests of employees. Now let's move on to the crude oil market. Global crude oil prices climbed today as escalating attacks between the US and Iran heightened tensions across the Gulf. Brent crude was trading 2.1% up at $86.02 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% higher at $81.02 per barrel when reports last came in. How concerned, Dr. Sharma, are you with these developments? A 60-day ceasefire, which really led to a great deal of investor sentiment all across the globe, is now being damaged in a significant way because not only oil and gas prices are likely to go up, but really business costs are likely to be go up as well, and travel and tourism is going to be hit in a big way.
4: Yes, Arjun, this is I think very unfortunate for the global economy that peace was in process and then suddenly they are again intensifying the war in West Asia, which is impacting the crude significantly. Now 85-86 is not a favorable number because we were anticipating that crude will now fall to 70, somewhere between 70 to 75 and stable there. But now again, this will be a great challenge for the global inflation trajectory, and not only the inflation numbers but also impact the many segments of the economy, because economic activity is greatly supported by the energy, like the crude oil prices.
3: Agriculture also, because
4: agriculture inputs are also increase and impact the production cost of the farmers.
2: तो इसमें SP ये भी ही तो है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर के संतुलन बनाना आजकल पूरे विश्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे उन देशों के लिए तो भी ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं.
4: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया. जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रंप साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोले और दोनों एक टेबल पर आए और कुछ फाइनल हो. बट इस जंक्चर पे जो सिचुएशन है दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी.
3: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.2% upar aakar 1,46,576 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.4% niche aakar 2,15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों का, खासतौर पे अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके मैं इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय.
4: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है, तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा, अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज़्यादा हर रोज अनाउंसमेंट्स हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीज़ों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
2: इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
4: जी शुक्रिया, थैंक यू.
3: And now closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
2: Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं रोहिणी लेकर गीत मेरे मन में एक बार फिर से स्टूडियो से साथ हूँ दोस्तों। और दोस्तों बड़े प्यारे एहसास आपसे साझा करूंगी और सदाबहार गीतों का साथ भी बना रहेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि कई दर्दों की गहराई कभी कभी केवल आंखों में आए आंसुओं से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार सबसे गहरी नमी पलकों के पीछे रह जाती है और पलकों के पीछे से गहराई को बताने का ये गुनगुनाता अंदाज आप तक मैं पहुंचाऊंगी इस आपके गीत मेरे मन मीत में, और जिसे आप सुनेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये गीत जो कि है तलाश फिल्म से, इस गीत को आवाज दी लता जी और रफी जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत एस डी बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मन मीत का इस गीत के साथ।

0: तो फरमाना।
1: ये तो पलकों से पीछे की बात थी, लेकिन जनाब अगर आपके ख्यालातों की बात हो तो ये गीत बड़े खूबसूरत अंदाज में इन बातों को बयां करते हैं। अगला गीत आए मिलन की बेला फिल्म से आप सुनेंगे लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुने ये अंदाज।

जी हाँ, इतने प्यारे गीत सुनकर बुरा तो शायद कोई नहीं मना सकता। 100.1 मेगा हर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत, दोस्तों आप सुन रहे हैं और ये अगला गीत आपकी नजर करते हैं। जी हाँ, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, आवाज दी है रफी साहब और लता जी ने, और दोस्तों संगीत से इस गीत को सजाया है एस डी बामन जी ने।

दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ईश्वर का तो शायद यही सोचना है कि कुछ नहीं अच्छा तो दुनिया में बुरा भी कुछ नहीं, कीजिए सब कुछ मगर अपनी जरूरत देखकर। जी हाँ, बिल्कुल। और जरूरतें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं दोस्तों। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यूं बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। 100.1 MHz पर गीतों का ये प्यारा अंदाज, सुरीला अंदाज आप सुन रहे हैं मेरे यानी रोहिणी के साथ। और ये अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

कहते हैं ना कि आओ कि अब ये दिल चैन तो पा जाए भटकरा ही कोई मंजिल को पा जाए। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। लेकिन श्रोताओं, ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये मुझे बार बार कह रही है कि आज गीत मेरे मन मीत को मुझे यहीं समेटना होगा। तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, आपको छोड़ी जाती हूँ एक और बेहद सुरीले तराने के साथ। जी हाँ, अंजना फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे जिसे मखमली आवाज से सजाया है रफी जी और सुमन कल्याणपुर ने। और इस गीत को आवाज तो इन्होंने दी, लेकिन अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, और संगीत का आनंद आप लेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के अंदाज में। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए कुछ इसी अंदाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं आपका मनपसंद निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो ना, न जाने क्या हुआ है मुझे तुमसे मिलने के बाद। हर दुआ में शामिल हो तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद। बेकरार सा रहता था दिल मेरा हमेशा, पर अब सुकून मिलता है मुझे तुम्हारी बाहों में आने के बाद।

हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हवा के हर झोंके में तुम्हारा ही साया लगता है। अब तो लौट आओ कि सांसें भी पूछती हैं कि तुमने किसे इस कदर दिल में बसाया है।

तुमसे मिलने से पहले तक सिर्फ जीते रहे थे हम, तुमसे मिलने से पहले तक तो सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे क्या मिले कि जिंदगी से ही मोहब्बत सी हो गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, मन कही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम निशिगंधा।

तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना ये सारा जमाना बेगाना सा लगता है।

तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है, तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है। ये देख कि वो अपनी रूह को भी तेरी चाहत में उतार बैठा है।

तेरी चाहत में खुद को भुला दिया मैंने अपने हर पल तुझ पर लुटा दिया मेरा दामन तो है तेरे कदमों की छांव में अब कोई फर्क नहीं धूप और छांव में

जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जब से तेरे साथ की कसम ले ली। अब तो मेरी किस्मत तेरे ही हाथों में है, मैंने अपनी खुशियां तेरे कदमों में जो रख दी।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपसे 1:10 पर फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉक्टर मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects, including a four-lane Greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane Greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas, including healthcare, education and road infrastructure. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of this month, of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in Ministry of External Affairs Sibi George said, these state visits are being undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania. National Commission for Allied and Healthcare Professions has released the competency-based curriculum for the two-year diploma in medical laboratory technology to strengthen allied healthcare education. The Ministry of Health and Family Welfare said that all institutions currently offering or intending to offer the DMLT program have been advised to implement the curriculum from the academic year 2026 with mandatory adoption from the academic year 2027-28. Additionally, the NCAHP has notified 16 competency-based curricula across various allied and healthcare disciplines, including applied psychology and behavioral health, physiotherapy, optometry, nutrition and dietetics. The Directorate of Enforcement has conducted simultaneous search operations across various locations in Indore and Mandsaur of Madhya Pradesh in connection with the case related to alleged trafficking of 70 kilograms of MDMA drugs worth approximately 70 crore rupees. The investigation is based on an FIR registered by the crime branch Indore against various accused persons. ED said that the searches have resulted in the recovery of crucial incriminating documents and digital evidence. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okura withdrew from the world's singles quarter-final, giving the Indian shuttler a walkover. Sindhu will now face China's Chen Yufui in the semi-finals at Tokyo Metropolitan Gymnasium today. And that is the end of this news bulletin.

प्रस्तुत समय हुआ है 1:11 और 23 सेकेंड, और अब समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तेरे संग ही जीना है मुझे, अब यही आखिरी चाहत है मेरी।

अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मुझे तेरी हर बात पर इकरार है, क्योंकि तू ही मेरी तकदीर है।

तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में, तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में कि अब तेरे बगैर कहाँ जाएंगे हम, तू ही तो रहता है हर वक्त मेरी बातों में।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, इस धड़कन में बस तुम्हारा ही तो राज है।

जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, कदम तो बस मेरी तरफ ही आते हैं।

आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं, आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं कि देखो मेरा महबूब आता है इन वादियों में, तो ये बहारें भी मुस्कुराती हैं।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और समाचारों के बाद कार्यक्रम रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ. सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर.

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया यह अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया ईडी ने बताया कि यह जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग लापता हैं सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला जिनमें 2 की हालत

0: गंभीर हैं। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया है कि ये भूस्खलन सुबह चोंगचिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचाव कर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तेरी नजरों में कुछ तो बात है, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है।

जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास भी नहीं आती।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये रात भी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। तुम पास हो तो धड़कनें भी गुनगुनाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद खुदा ने ये खुशियां बरसाई हैं।

दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, और तुम पूछते हो कि तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है।

दोस्तों, अब समय हुआ है समाचारों का। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचे और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier." Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a four-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from 19th to the 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in Ministry of External Affairs, Sibi George said, "These state visits are being undertaken at the invitation of the presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania." National Commission for Allied and Healthcare Professions has released the competency-based curriculum for the two-year diploma in medical laboratory technology to strengthen allied healthcare education. The Ministry of Health and Family Welfare said that all institutions currently offering or intending to offer the DMLT program have been advised to implement the curriculum from the academic year 2026-27 with mandatory adoption from the academic year 2027-28. Additionally, the NCAHP has notified 16 competency-based curricula across various allied and healthcare disciplines, including applied psychology and behavioral health, physiotherapy, optometry, nutrition and diet ethics. The Directorate of Enforcement has conducted simultaneous search operations across various locations in Indore and Mandsaur of Madhya Pradesh in connection with the case related to alleged trafficking of 70 kilograms of MDMA drugs worth approximately 70 crore rupees. The investigation is based on an FIR registered by the crime branch Indore against various accused persons. ED said that the searches have resulted in the recovery of crucial incriminating documents and digital evidence. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday held a series of interactions with leading technology and industrial companies of Finland during his visit to the country. During his meeting with the senior leadership of Nokia Corporation, he discussed strengthening collaboration in next-generation telecommunications, 5G and 6G technologies, digital infrastructure, research and development, and innovation partnerships. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to the semi-finals of the Japan Open 2026. Sindhu will now face China's Chen Yufei in the semi-finals at Tokyo Metropolitan Gymnasium today. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती. और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छलिया बापू के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने.

अभी आपने गीत सुना छला बाबू से। दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार हमेशा दिलों को करीब रखता है, और जब प्यार दिलों में बस जाए तो उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं लगता।

सच्चे प्यार में इंतजार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है और इंतजार की हर घड़ी प्रेम की गहराई को और बढ़ा देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम चल रहा है हम राही. प्यार की मधुर मुस्कान, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता. प्रेम की मासूम अदाएं, प्रेम की मासूम अदाएं कब दिल जीत ले पता ही नहीं चलता.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार के बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं। प्यार में बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि मन कब सुकून और उजालों से भर जाता है।

तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, यादों की खुशबू हर पल साथ रहती है और मोहब्बत हर धड़कन में जिंदा रहती है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। छोड़े जा रही हूँ आपको हमराही कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects, including a four-lane greenfield Delhi Amritsar Katra Expressway, and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen power train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. Union Home Minister Amit Shah has arrived in West Bengal on a three-day visit. He was received by West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari on his arrival at Baghdogra Airport in Siliguri last night. Today, Mr. Shah will visit the BSF's 18th Battalion at Seema Chowki in Jumagach, where he will address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive, lay foundation stones, inaugurate several development projects and interact with BSF personnel. Later, the Home Minister will hold a series of high-level meetings at Uttar Kanya in Siliguri. The meetings will review various administrative matters, the implementation of the new criminal laws in West Bengal, and the status of birth and death registration. Later in the evening, he will leave for Kolkata. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the Parliament this Sunday ahead of the upcoming monsoon session of the Parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure a smooth functioning of both the Houses of Parliament. The monsoon session will commence on the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislation are scheduled to be taken up for discussion and passage. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from 19th to 25th of this month. Briefing media in New Delhi, Secretary West in Ministry of External Affairs, C.B. George said, these state visits are being undertaken at the invitation of the President of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania. The Directorate of Enforcement has conducted simultaneous search operations across various locations in Indore and Mandsaur of Madhya Pradesh in connection with a case related to alleged trafficking of 70 kilograms of MDMA drugs worth approximately 70 crore rupees. The investigation is based on an FIR registered by the crime branch Indore against various accused persons. ED said that the searches have resulted in the recovery of crucial incriminating documents and digital evidence. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday held a series of interactions with leading technology and industrial companies of Finland during his visit to the country. During his meeting with the senior leadership of Nokia Corporation, he discussed strengthening collaboration in next-generation telecommunications, 5G and 6G technologies, digital infrastructure, electronics manufacturing, research and development, and innovation partnerships. In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu has advanced to semi-finals of Japan Open 2026. Sindhu progressed after Japan's former world champion Nozomi Okuhara withdrew from the women's singles quarterfinal, giving the Indian shuttler a walkover. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की लम्हे फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है हरिहरन ने।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से, इस गीत के संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म आनंद से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है अरुणिमा।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

नियम की आवाज में गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरडी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरडी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इश्क पर जोर नहीं से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस टी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से साधना सरगम नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्दी मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जो आखिरी गीत है इस कार्यक्रम का, वो है फिल्म हरियाली और रास्ता से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। छोड़े जा रहे हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है पंजाब में

0: भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 54 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सुजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रवि